0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

0: Mania Extreme Energy Drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज

मो बाहर लड़े हो ढोका खोलना बंदे जो आप ढोका छोड़े जिंदु सोचे दुख दिंसे यार मो तो बाहर लड़े दिंसे कुन्दस्ती थे मर बाहर

राजा नमस्कार सारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाई नहीं परे का घरे मंडा खुन सवाले दुर्योधन समान कर्णई समान दानमा तागत श्री बलराम कैसरी होस सद्वात कई काम राजा धर्म कुमार कैसरी होस श्री ब्रह्म ज्ञान अनि विदुर कैसरी ज्ञान होस सुजनमा मानुन बढाले पनि कृति उज्ज्वल होस् सुत सहित का

सीताजी कल भेटी फर्काउला फेर हमका हजुरमा गई विस्तार बिन्ती गरेर आई पसौला तिम्रो आहार भई। यति बात सुनि भन्न चिन्ती सुरसा मेरा मुखैमा पसी निस्कि जाऊ नै भने म बलले पक्रेर दरा घसी। भोकी मैलिँदा उरिन त कपाल खोरे कि केसाबुसाई लट्टा मात्र परे कि खाली भूमिमा रुँदै बसे कि तसाई राम चित्त दिए मर्नु बढिया मानेर सीता तहाँ झन्नी मतलब ली खड़ी भैनी पक्रेर गई महा। एक दिन ही हनुमान म चित्रकूटमा रामका नजिकमा थिया।